0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ खुशी की बात कर रहे थे, तो एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये कि जब तक अपनी सही पहचान नहीं होगी, जहाँ तक मैं ये शरीर थी तब तक मेरी सारी चीज़ें इससे जुड़ गई थी, चाहे वो परफेक्शन की बात थी, चाहे मेरी खुशी की बात थी, चाहे मेरी अचीवमेंट्स की बात थी। लेकिन यहाँ जहाँ मैंने थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट किया, अगर हम आपको पिछली कड़ी याद दिलाएं, तो बात यहाँ तक आई थी कि क्या मैं दिन भर ये मान के चल सकता हूँ कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मैं हूँ। अगर ये ड्रेस जो मैं हूँ ये मैं बन जाऊँगा, तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो इस ड्रेस पर थी। तो बात यहाँ पर आई थी असली पहचान की, कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियस बींग हूँ, ये पता चल जाए और कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस रहे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पता चल गया, समझ में भी आ रही है, और जब हम बार बार ये कह रहे थे कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी दिखा। अब कंटिन्यूस रिमेम्बर कैसे करना है, लगातार याद कैसे रखना है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ हम बात यहाँ पर आए थे कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, हमने ये कहा था कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये भी मान लें कि मैं यही हूँ, तो जिस तरह की बात की थी उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस कड़ी में यहाँ बैठकर बात करते हैं बिल्कुल क्लियर लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो सारी बातें जो हैं, जो जिन पर मैं अभी तक जी रहा था, वो फिर लौटती हैं। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जस्ट वॉन्ट टू रिवाइव दैट।
1: सी द प्रायोरिटी गेट सेट। मैं कौन, मेरा क्या क्या, जैसे हमने शुरू में भी देखा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों के प्रति, परिवार के प्रति, काम के प्रति, लेकिन मेरे प्रति। तो जब हम कह रहे थे मेरे प्रति, तब हमने देखा कि कई बार आया, हाँ मेरे प्रति भी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता ना, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता। बट आई लुक आफ्टर द बॉडी, सो आई थॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड विद लुकिंग आफ्टर द बॉडी, बिकॉज आई थॉट हु एम आई एम द बॉडी। बट बिकॉज आई डिडंट नो कि मैं ये चैतन्य शक्ति, आई एम दिस कॉन्शियंट बींग, I never put that in the list of my responsibilities. Ki I have to take care of this, the mind, the intellect. I have to take care of this. Ye nahi socha. Sara, jaise hi humne, dekho kitni sari baatein change honge. Main energy hoon, to mrityu kiski hogi? Who will die? Sharir ki die. Fear of death will finish. You know, this is just a thought right now. Hame sirf lag raha hai, fear of death finished. Lekin jis atma se फियर ऑफ डेथ निकल जाता है, उनको जीवन में कोई और बात का डर नहीं लगता है। व्हेन यू टॉकिंग ऑफ निर्भय जीवन, फियरलेस लाइफ, वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसको डेथ का डर नहीं हो। और डेथ का डर, अपनी डेथ का डर नहीं है, फैमिली की किसी की।
0: एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि आज जिस स्थिति में है ना लोग, वो डेथ को आत्मसात करने को तैयार है, यू नो, मे बी पेन के कारण, बट देन राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इवन लाइक फॉरगेट अबाउट द एज, ये नहीं कह रही मैं कि बुजुर्ग ही ये मान रहे हैं, आज बहुत कम एज से भी लोग अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को खत्म ही करते जा रहे हैं।
1: लेकिन वो क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, हाँ। तो अपनी इम्पोर्टेंस क्या जानेंगे? अगर अपने आप को सिर्फ क्वालिफिकेशन और पोजिशन ही समझा, तब तो मार्क्स के लिए सुसाइड किया ना। क्यों किया? Just because mere marks utne nahi aaye, I had no value for my life, because I thought life was all about only performance, achievement, physical looks, possession. To wo sare criteria jahan fulfill thode bahut upar niche ho rahe the, so what happened? We said I don't want to live. Relationships mein maine samjha main kaun. Aaj bahut sare log emails likhte to wo kehte, you know, mera ye relationship workout nahi hua, I don't want to live. So death is still not, you know, accepted ke haan bhale kabhi bhi. To wo lagta hai kyunki we are fed up of life. Ke, you know, nothing is working out, success nahi aa rahi hai. Lekin ye sari cheezon ka perspective change ho jayega jab success bhi samajh mein aa jayega. Meri success, not meri success. Wo definition change ho jayegi. My whole purpose of life will change. Jab maine ye samjha ke I am the body, tab maine samjha jeevan kitna hai. यहाँ से इतने स्पैन में मुझे सब कुछ अचीव कर लेना है और जल्दी जल्दी करना है। दैट्स वेयर द बिलीफ केम कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, एवरी वन इज इन द रेस, क्योंकि हर एक ने सोचा इतने से इतना टाइम है, सभी ने रेस में भागना है, जो करना है अभी कर लो,
0: क्योंकि जगह भी उतनी है, उतने ही लोग हैं, तो मुझे मतलब जो ज्यादा यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो थी,
1: तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जब हमने बोला तो फिटेस्ट क्या, क्योंकि हमने सोचा दिस इज हु आई एम, पोजीशन इज हु आई एम, तो फिटेस्ट कौन है, जो ज्यादा फिजिकली हेल्दी है, जिसके पास ज्यादा धन है, पोजीशन है, वो फिटेस्ट है, भले वो इमोशनली बिल्कुल कमजोर हो, वो फिटेस्ट। तो उसको फिटेस्ट बनाने के लिए, सक्सेस को उस मात्रा में अचीव करने के लिए, हम गलत भी करने के लिए तैयार हो गए, हम अनएथिकल मेजर्स भी यूज करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमने सोचा इतने स्पैन में सब कुछ अचीव करना है। फिर हमने अपने आप को ये समझा तो हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि बेटर वो है जिसके पास ज्यादा
0: चीजें हैं,
1: जो ज्यादा शारीरिक सुंदर है, बेटर वो है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज किसके पास ज्यादा है। तो सारा पर्सपेक्टिव ही तो चेंज हो गया, क्योंकि मैं कौन हूँ कि डेफिनेशन चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया।
0: वैल्यूज की वैल्यू ही नहीं है।
1: आई डिड अ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वो इतने स्वीट से छोटे छोटे बच्चे, और हमने टॉपिक लिया, दे गेव द टॉपिक, हाँ, डज ऑनेस्टी वर्क इन टूडेज टाइम, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन वॉज कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल, मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल,
0: सब्जेक्ट वी आर कमिंग,
1: और ये सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया तो, लेकिन बहुत छोटे छोटे, एंड चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड वेरी इजिली, तो हमने उनसे ऐसे करते गए, आधे पौने घंटे के अंदर दे सेड यस वी प्रॉमिस वी विल बी ऑनेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, वो चले गए अपनी क्लास में। टीचर्स आकर बाद में बोलते हैं क्या फायदा है ये सब उनको सिखाने का, बट ऑनेस्टी रियली डजंट वर्क इन डे टू डे लाइफ। आई सेड देन लेट्स गो बैक टू देम एंड टेल देम दैट, यू नो, लेट्स गो एंड टेल देम कि ऑनेस्टी डजंट वर्क, डिसऑनेस्टी चलती है। फिर देन दे से वो थोड़ी कर सकते हैं, उनको तो यही बोलना, आई मीन We don't know what we are doing. We really don't know. And ये आप सोचो कि जो हम instruments हैं, चाहे हम parents हैं, चाहे हम teachers हैं, जो हम बच्चों को values सिखा रहे हैं, अगर at the back of my mind I don't believe in it, what will I teach?
0: It's of no use.
1: I shared with those teachers. I said, अगर आप class में जाकर बोल भी रहे हो, believe it before. Why not believe it? They said, नहीं जी, practical में तो नहीं चलता है। और फिर अगर आपकी अंदर की सोच है कि practical में honesty work नहीं करती, आप कितना भी जाकर वो बच्चों को समझाओ, एक तो आपकी सोच की वो वाइब्रेशन, सी दैट्स वेयर वाइब्रेशन प्लेज सच अ बिग रोल, आपकी वो कन्विक्शन ही नहीं जाएगी, आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी।
0: तभी तो बच्चे डिसऑनेस्ट होके फिर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप डिसऑनेस्ट हो।
1: दैट वाज द थिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग, क्योंकि आई डोंट माइंड कि मैं झूठ बोल लूं, लेकिन मुझे मटेरियलिस्टिकली अचीव करना है। और फिर वो यही कहते, सभी का एक कॉमन बिलीफ था कि जो ऑनेस्ट होता है उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो दूसरे तरह के मेजर्स यूज करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस। तो सक्सेस क्या, मटेरियलिस्टिक, क्यों, मैं कौन हूँ, मैं शरीर को जितने कंफर्ट्स मिले उतना मैं कंफर्टेबल। व्हाट वी डिडंट अंडरस्टैंड कि हम जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार हम अनएथिकल मेजर्स यूज करेंगे, हम अपने लिए यहाँ पीसलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए शांति ढूंढनी पड़ रही है।
0: यू नो अनदर वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम जस्ट कम टू केम टू माय माइंड इज कि झूठ बोल दो, डिसऑनेस्ट हो जाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए, यू नो वो आपकी एक्सपर्टीज है, यू नो समवेयर ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है।
1: तो झूठ बोलना दूसरे ने नहीं पकड़ना है, पकड़े पहले हम यहाँ जाते हैं, जो हम कितनी बार बोलते हैं ना कि यहाँ क्यों वो क्लटर हो रहा है, क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है, हम यहाँ पकड़े जाते हैं। जैसे ही वी हैव डन समथिंग विच इज अगेंस्ट माई ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ आई हैव क्रिएटेड, भले हम उसको दबा देते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्रिएट हो गया। और जब एनर्जी गलत गई, रिजल्ट उसका कभी पॉजिटिव, हाँ वो वाला रिजल्ट आ जाएगा, आप जो ढूंढ रहे हैं वो वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा। अब जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, किसका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। तो फिर मैं ये प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ तकलीफ नहीं दूंगा, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग विल चेंज, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टू गेट मटेरियलिस्टिक सक्सेस,
0: बिकॉज़ दैट्स मी यू नो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड।
1: क्या आपको अगर आज पता चले कि आपको ये अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने हाथ पैर काट के देने पड़ेंगे, आप दे देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे मर्सिडीज तो मिल जाए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ काट के दे दूंगा, आप देंगे अपना हाथ, नहीं ये मैं हूँ, यू नो ये मैं हूँ, तो ये नहीं कटना चाहिए। यहाँ कुछ काट के देना, ओ एक मिनट भी नहीं लगेगा आज झूठ बोल, क्योंकि ये मैं हूँ. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन इल्यूशन. और ये एक बिलीफ सिस्टम जिस दिन रियली आपको समझ में आया और आपने इसको चेंज किया, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. कई बार कई लोग कहते हैं उस टाइम सोचना पड़ता है, सच बोले या झूठ बोले, यू नो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट. बट जहाँ फोकस राइट है कि ये मैं हूँ, आपके पास दो थॉट नहीं आते हैं कि ये बोलू या ये बोलू, ये ही बोलना है सच, चाहे उसका कोई भी रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डर्टी myself.
0: I need to protect myself. You know, my innate values जो हैं, जो मैं हूँ, वो तो, और actually अगर हमें ये realization, basically वही बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये realization हो गया, ये remembrance रह गई, तब मैं उसको protect करूँगा.
1: बिल्कुल, क्योंकि आपको जब समझ में आ गया, देखो हमें पता है, हमें आज तक ये सोच के चल रहे थे कि मैं शरीर हूँ, तो इसका ध्यान रखते हैं ना, रखते हैं ना हमेशा हर चीज क्या हो रही, एक्चुअली सब कुछ हो किस लिए रहा है, सारा कुछ जो अर्न करना है, प्राप्त करना है, वो किसके लिए है, इसके कंफर्ट के लिए है, नेवर माइंड कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ.
0: आई थिंक देन हमें अपने आदर्शों पर चलने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
1: वही बोल रही हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें कोई भी, इट्स नेचुरल, इट इज ना, आई मीन व्हाई वुड वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि ये करो या नहीं करो, मेरा सारा धन चला जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, जो जाना
0: है जाए. That's not important, you know, that will not remain important actually.
1: Priority right हो जाएगी.
0: आज जो बहुत बार लोग अपने आदर्शों पर खड़े हुए हैं, वो पेन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ तो हूँ नहीं, मैं खड़ा रहा अपने आदर्शों पर.
1: लेकिन ये सोच भी तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो मैं बोलती हूँ आई पर्सनली फील कि जो अपने वैल्यूज पर खड़ा हुआ, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस. एंड उसकी सक्सेस की रिजल्ट वो ये है कि दैट सोल विल ऑलवेज बी पीसफुल, काम एंड कंफर्टेबल. एंड जहाँ तक मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात आती, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आप एथिक्स पर चलें और आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिलेगा. ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, ये भी हमने कहीं ना कहीं जोड़ दिया है. हाँ, ये हो सकता है बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन फाइनली ये नहीं होगा कि यू नो यू आर टोटली गॉन एंड आपके पास कुछ नहीं.
0: हम अवेयरनेस में यही है. आज मैं अपने आदर्शों पर चलने वाली बनूं भी कि मैं सत्यता, मैं ऑनेस्टी, मैं इस पे रहूंगी, लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम तो है कि मैं हूं तो ये बॉडी ही, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है कि मुझे सत्यता पर चलना है लेकिन मेरी नीड तो इन्हीं को फुलफिल करने
1: की, सक्सेस की डेफिनेशन
0: यही थी. तो जहां जिस दिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम आ गया मेरे पास कि मैं वही हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आई थिंक देन मेरा पेन खत्म हो जाएगा.
1: नेचुरल, क्योंकि फिर आप अभी पेन क्यों हो रहा है कि मैं ऑनेस्टली चला
0: लेकिन मुझे चाहिए तो वही,
1: हाँ मेरी प्रमोशन रुक गई या ये हो गया, यू नो ये सारी चीजें पर जहाँ ऑब्स्टेकल, या मेरी ट्रांसफर हो गई, तो फिर मैं वैल्यूज पर था लेकिन मुझे सफर करना पड़ा. यू नो सफर किसको करना पड़ा, आपकी पोजिशन को सफर करना पड़ा, आपको सफर नहीं करना पड़ा. हाँ, आपको तब सफर करना पड़ता जब आपको फिर ये बात हर्ट होती जाती कि मेरी प्रमोशन रुक गई, वो मेरे से आगे निकल गए, क्योंकि अब हमने अपनी वैल्यू को छोड़कर हमने जेलसी क्रिएट करने शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हाई वी सेड एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग. तो सारा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो जाएगा,
0: वेरी ट्रू. यू नो, अच्छा, और होगा ये, उससे क्या होगा, जिस टाइम मैंने ये सोच लिया, एक तरफ अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं सच्चाई पे खड़ा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, हाँ, और दूसरी तरफ ये हुआ तो जेलसी तो हुई डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सोचा यही मुझे चाहिए था. जहाँ आई थिंक दिस वे नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो वर्क. द मोमेंट आई से आई जस्ट वॉन्टेड दिस मच, प्रमोशन विल ऑल्सो कम
1: ऑटोमेटिकली.
0: जहाँ मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं,
1: जहाँ हर्ट नहीं क्रिएट हुआ ना, तो आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रही, और वही चाहिए था, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स, सक्सेस जो भी चाहिए, मतलब जिसके लिए आप वो क्रिएट कर रहे थे, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. तो फिर सारा दिन में याद रखना इम्पोर्टेंट है कि नहीं,
0: and then now let's try to wait and watch, you know, कि अगर हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, let's see how our life changes.
1: Everything will change. Everything. And इसलिए आज दिन तक भी फिलोसफी में, रिलीजन में, हर एक ने यही कहा कि who am I अगर आंसर हो गया, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आंसर हो जाएंगे. सिर्फ छोटी सी जो बात हुई वो कहा कि हु एम आई आंसर होना बहुत मुश्किल है.
0: मैं इस पे एक्चुअली आना चाहती थी. आई जस्ट हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद समबडी और उन्होंने मुझे इतनी लंबी बात ये कही कि मैंने बोला कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ. ही सेड ये अगर इतना आसान होता ना, तुम ये आज यू नो सोच रही हो कि ये हो, बट ट्रुथ इज एब्सोल्यूट. यू नो इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग सिस्टर शिवानी, एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर. तो ही सेड इट विल नेवर गेट आंसर, इट इज द ओनली क्वेश्चन विच डजंट गेट आंसर्ड. So that's what I'm saying. Ki kyun itna confusion?
1: Who am I is the only question who doesn't get answered. Even just look at the statement. मतलब हम पूरी अपनी जीवन जीने वाले हैं without knowing कि मैं कौन हूँ. ये जीवन कैसे होगे? ये तो जैसे you know movies में दिखाते हैं कि actor को भूल गया कि वो कौन है. तो उसकी जीवन कैसे होती है? Confused, lost, without purpose. Yeah, that's why our life is like that. और इसलिए फिर हम बीच-बीच में रुक कर कहते Why am I here?
0: मैं क्या कर रही हूँ? हाँ.
1: Because why am I here? तो I कौन है? अभी हम I का आंसर देते mother. बच्चे तो बड़े हो गए, सेट हो गए. Why am I here? You know that's why this identity crisis comes. अब तो मैं retire हो गया. मेरे जीवन का purpose क्या है? क्योंकि मैं कौन था? Profession. वो तो खत्म हो गया.
0: तो फिर वो एक major depression set in होता है. Yes.
1: So many things are going up and down only because of not knowing. Who am I?
0: You know, जिस दिन आपके हाथ से जॉब चला जाता है, जिस दिन कोई लव्ड वन चला जाता है, जिसको जिसको अपने अपने पूरा फोकस बनाया हुआ है, मतलब कितना कुछ अगर ऐसे चला जाता है, देन आपकी लाइफ का यू नो देन वी से कि हमें जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा.
1: कोई उद्देश्य नहीं बचा. क्योंकि जब हमारे ये अक्वायर्ड चीजों में कोई ना कोई चीज पर कुछ ऊपर नीचे होता, पोजिशन पर, तो हम कहते मेरे जीने का कोई.
0: पर अगर ये इतना आसान है तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ ऐसे?
1: That I don't have an answer कि हमने उसको को complicated क्यों किया, लेकिन ये answer है कि अब जब ज्ञान मिल जाता कि ये इतना simple है, तो अब तो at least उसको हम study कर सकते. इतना कई बार complicated हो जाता कि instead of understanding कि I am a soul, we say my soul, मेरी आत्मा. You know इतना इतना ज़्यादा confusion है, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा मैं शरीर हो, तो हमने आत्मा को क्या कहा? मेरी आत्मा. It went all up and down. It's like saying, मैं ड्रेस हूँ, ये मेरी बॉडी है. That's how much we are confused. और फिर जब अगर आत्मा के बारे में सोचा, तो we connected it only with, you know, भूत, प्रेत, spirits, eerie. या जब कोई funeral पर गए, तो we'll think of आत्मा. सत्संग में गए, आत्मा, okay, समझ में आया. लेकिन practical life में आए, फिर मैं कौन हूँ? It was everything else. सारा दिन में अगर हम चेक करें, सब कुछ याद है, except for remembering.
0: कि मैं कौन हूँ?
1: मैं वो आत्मा हूँ. मैं कौन हूँ? सारी लिस्ट याद आएगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ वो नहीं याद आएगा. तो फिर जीवन कैसी होगी? तो जो हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट करते हैं, वो एक्चुअली ये याद दिलाने के लिए करते हैं अपने आप को. क्योंकि भले अभी समझ में आ गया है, नॉलेज भी है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड संस्कार है. तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के अपने आप को फिर से रिमाइंड करते, इस शरीर का मालिक मैं वो आत्मा हूँ. इससे एक और चीज़ भी होती, मैं मालिक हूँ तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, दिस ऑल कम्स बैक अंडर माय कंट्रोल. इट्स लाइक द ड्राइवर इज वेकिंग अप. यू नो एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर अंदर सो गया है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो फिर भी चल रही है. गाड़ी चल रही है, और वही हमारे जीवन की गाड़ी का हिसाब है. यात्रा पर चल रही है, ड्राइवर अंदर सोया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेकनिंग. अवेकन दिस ड्राइवर विद इन, कि उठे और अपनी गाड़ी को संभाले, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसे चल रही है विद ड्राइवर्स ऑल
0: स्लीपिंग
1: एंड देन वी गो लाइक दिस. तो दिस जो कॉन्शंट एनर्जी है, ये समझने में क्योंकि थोड़ा सा हमें यू नो लगता कि ये बहुत पता नहीं किस बारे में बात कर रहे, तो ये बहुत सिंपल है कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ, आई थिंक, डज एनीबडी नीड प्रूफ कि मन है या नहीं है? एवरीवन नोज, एक बच्चे को भी पता है कि मन सोचता है. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, इट्स द माइंड. व्हेन आई क्रिएट थॉट्स, आई टेक अ डिसीशन ऑन इट, इंटेलेक्ट. एंड जो डिसीशन मैंने लिया, कर्म में आया. कोई भी कर्म बार बार रिपीट हुआ, हैबिट, संस्कार. तो हम क्या कहते हैं? ये संस्कार, बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है. कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है. तो संस्कार किसके हैं? आत्मा के. तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये मैं आत्मा हूँ. कुछ और अजीब सी चीज तो है ही
0: नहीं. I know, so many times, जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, बड़े बूढ़े बहुत बार बोल रहे होते हैं कि ये बहुत संस्कारी आत्मा है. तो हमें, मैं ये सोचती हूँ, जब भी मैं बच्चे को उसको देखती थी पहले, तो मैं कहती थी अच्छा कोई और चीज है, मतलब कोई एक ऐसा पोटली है जिसमें वो संस्कार भरे हुए हैं.
1: इट इज दिस एनर्जी कि मैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ, कार्य करती हूँ, ये मैं आत्मा हूँ. क्यों वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो जब ये सब कुछ पीछे रह जाएगा तो फाइनली साथ में क्या जाएगा? सिर्फ कर्म, और वो कर्म से क्रिएट किए गए संस्कार. तो जीवन में चलते हुए कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पीछे रह जाएगा और क्या साथ में जाने वाले हैं. अब ये सारी बातें हम सुनते तो हैं, कब करते हैं, लेकिन जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते तो हमें तब याद आता कि यू नो, और इसको हम कहते हैं शमशानी वैराग, कि उस टाइम वैराग्य आता है कि क्या सब कुछ तो रह जाएगा, यही लेकर जाना है. तो वैराग्य इन चीज़ों से नहीं करो, सब कुछ यूज़ करो, लेकिन सब कुछ यूज़ करते हुए ये तो याद रखना है कि क्या साथ में लेकर जाना है. उस टाइम याद नहीं है, फिर जब कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता तो कहेंगे हमें तो क्या याद हाँ. पास्ट में मैंने क्या किया है. इट्स अ कनेक्टेड साइकल, यू नो,
0: एंड सो मेनी टाइम्स वी से मैं ये नहीं जानना चाहता, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा ना पास्ट, तो मेरे साथ अब ये क्यों हो रहा है.
1: तो अवेयरनेस के साथ चलेंगे, प्रेजेंट पर ध्यान देंगे, तो प्रेजेंट अच्छा बनेगा ही बनेगा, और प्रेजेंट जहाँ अच्छा होगा वहाँ फ्यूचर अच्छा ही अच्छा है. और जब ये समझ में आता कि मैं ये कॉन्शेंट एनर्जी हूँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्शेंट एनर्जी की नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है. हमारे आज बहुत सारे संस्कार बन चुके हैं, अक्वायर्ड हैं, क्योंकि कुछ संस्कार फैमिली से, पेरेंट्स से मिलते, कुछ संस्कार एनवायरमेंट से बन जाते, हमारी नेशनैलिटी, कास्ट, किस स्कूल में हम जाते. कुछ संस्कार हम अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते, यू नो, हमने आज डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वी कैन डू इट. हम अपने झूठ के संस्कार को कट करके ऑनेस्टी का संस्कार क्रिएट करते. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेचर ऑफ दिस एनर्जी. तो आज हर एक को क्या चाहिए, हम इस पूरी सीरीज में भी क्या ढूंढते आए हैं, खुशी, हैप्पीनेस. सो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ये चीज़ें चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम. क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, दिस इज माई ओरिजिनल नेचर, लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट टुडे. तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं, बिकॉज मुझे नहीं ये पता कि मैं ये हूँ, तो मैंने उनको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया,
0: चीजों में ना, बेसिकली. अच्छा, चाहिए ये भी कह रहे हैं हम, यू नो, हम इतने मटेरियलिस्टिक, बेसिकली अगर ये पूरे सेंटेंस को भी देखें, हम कह रहे हैं हमें चाहिए, तो चाहिए में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ूंगी मैं जिससे मुझे खुशी मिल जाएगी.
1: एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बॉडी हूँ ना, मैं बॉडी हूँ, खुशी किसको चाहिए, इसको चाहिए. इसको खुशी कब मिलेगी? जब इसको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जब इसको एक अच्छा, तब इसको खुशी मिलेगी. लेकिन फिर हमने रियलाइज किया, गाड़ी तो आ गई, कंफर्ट मिला इसको, लेकिन खुशी नहीं मिली, क्योंकि खुशी इसको नहीं चाहिए थी, इसको कंफर्ट चाहिए. बॉडी नीड्स कंफर्ट, लेकिन इसको खुशी नहीं चाहिए, क्योंकि डजंट फील. खुशी किसको चाहिए थी? यहाँ, वो हमें पता नहीं था, तो हमने कहाँ ढूंढा? बाहर ढूंढा. अब राजयोग हमें ये सिखाता कि ढूंढना नहीं है, इट इज माय ओरिजिनल नेचर, आई एम अ पीसफुल बीइंग. ओम शांति हमारा जो ग्रीटिंग है, दैट इटसेल्फ मींस आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, अ ब्लिसफुल बीइंग. हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, कहीं से, किसी में, लोगों में नहीं. आई एम अ हैप्पी बीइंग, प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग. अब कल इस कॉन्शियसनेस के साथ काम पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने बारे में भी यही कॉन्शियसनेस, एंड
0: कि दूसरे के भी अपना इननेट उसका जो है संस्कार है उसका. इनफैक्ट अभी तक हम ये कहते थे कि जब हमें बड़े बूढ़े कहते थे कि बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तलाशो, तो अमेजिंग थिंग था कि मैं ये सोचती थी कि अंदर कैसे तलाशूं, कहां मैं, यू नो, क्योंकि अंदर भी तो कोई चीज ही तो मुझे देगी हैप्पीनेस.
1: एब्सोल्युटली,
0: यू नो, लाइक बिकॉज आई वाज थिंकिंग, वी ऑल वर थिंकिंग दिस वे, कि अंदर ही कोई चीज, मुझे अपने अंदर ही शांति को ढूंढना है, तो वो कहाँ ढूंढू मैं अपने अंदर.
1: और तब नहीं पता चला, तब फिर कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया,
0: फिर बाहर गए.
1: राइट, सो नाउ लेट्स चेंज आवर वोकैबुलरी. देयर इज नो फाइंडिंग पीस, हमने फाइंड नहीं करनी है पीस, पीस ऑलरेडी है. आई एम अ पीसफुल बीइंग. तो कुछ समय उसके ऊपर करके देख
0: कर सकते हैं,
1: बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज सुबह कर सकते हैं, अपने आप को फिर से याद दिलाएं. यू नो, इट्स लाइक समवन जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जब मेमोरी चली जाती तो उनको क्या कराया जाता? धीरे धीरे धीरे धीरे याद करो तुम कौन हो. तो राजयोग भी यही है, धीरे धीरे हमें याद दिलाता कि तुम कौन हो. यू आर अ पीसफुल बींग, आई हैव टू रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ. तो लेट्स सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स करके अपने आप को देखें। आज शायद पहली बार

0: Shakti, creator of every thought and feeling. I, the conscient being, the energy which runs this body of matter in the center of the forehead. Ek sundar chamakta hua sitara, point of light. This is me, eternal, immortal, peaceful and pure. Shanti, prem aur khushi main bahar dhoond rahi thi. Ye to meri apni nature hai. I am a peaceful being. As I go out today with family and work, I just need to remember I am a peaceful being interacting with other peaceful and pure beings. Om Shanti.
1: Om Shanti. Sister Shivani, thank you so much. Om Shanti. Agar hum apne liye dekhe zindagi mein, to kahin na kahin ye belief system bahut important ho jata hai ki use change kare ki main hoon kaun. Yahi se base hai, yahi se shuruaat hoti hai. Reflect zarur kare, इसे अपना हिस्सा बनाए ज़िंदगी का, सुबह का हिस्सा. और जैसे याददाश्त की बात की है कि वो याद अपने आप को हर पल दिलाए कि मैं हूँ कौन. उम्मीद करते हैं आज जो हमने बात की है उसे हम ज़रूर आत्मसात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.